0: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நிலைப்பண்மலை 102.6.

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: நேயர்களின் கவனத்திற்கு NCERT விளம்பரதார நிகழ்ச்சி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பிற்பகல் 3:30 முதல் 4 மணி வரை FM ரெயின்போ 102.6 MHz ஒலிபரப்பாகும். நேயர்கள் கேட்டு பயன்பெறுங்கள்.

0: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओ, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूं और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविन्द्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गाँव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी। लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहे लिख लें या स्केच बना लें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि यह काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं। जबकि सच्चाई ये है श्रोताओं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं। साथियों, वो था ग्रेफाइट यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था। हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसने ग्रेफाइट को रख

लिखने लगे, यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई, जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB, तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक, इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई, समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओं, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई, इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ

0: गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे

0: पहुंचे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
1: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
3: यस सर।
2: नाथू सिंह, निशाना साधो।
1: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
1: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
3: जी।
2: फायर।
1: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा। निशाना साधो।
1: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, ज्यों-ज्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, पर वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा,

0: विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा,
1: सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा।
0: ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
2: सीमा प्रहरी
3: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: நேர்கள் இதுவரை NCERT தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கும் விளம்பரதாரா நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் கேட்கலாம் செய்தி சுருக்கம். சென்னையிலிருந்து அஞ்சலாகும். அதனை தொடர்ந்து 4:02 பொதிகை தும்பி நிகழ்ச்சி இடம்பெறும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது நமது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி.

0: बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में अर्जुन।
2: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 250 points. Nifty settles at 22,623. India's wholesale inflation surges to 11.39% in September this year. And International Energy Agency projects global oil supply to decline by 5.8 million barrels per day. Forecasts oil demand to fall by 2.6 million barrels per day in 2026.
0: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख। सेंसेक्स में 250 से ज्यादा अंकों की सुस्ती। निफ्टी 22,623 पर बंद हुआ। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक तेल आपूर्ति में 58 लाख बैरल प्रतिदिन कमी का अनुमान व्यक्त किया। तेल की मांग में 26 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट की बात कही।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज का कारोबार उतार चढ़ाव से भरा रहा और अंत में गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 252 अंक यानी 0.34% गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक यानी 0.44% लुढ़ककर 22,623 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप सूचकांक में 0.1% की मामूली गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% नीचे पहुंच गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended in a negative zone in a volatile trade today. Sensex dropped 252 points, or 0.34%, to close at 72,782. Nifty dipped 99 points, or 0.44%, to settle at 22,623. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index eked out a marginal loss of 0.1%, while the Small-Cap 100 Index fell 0.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से आज 19 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में बजाज फाइनेंस 2.5% से अधिक लुढ़का, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.2% से अधिक गिर गया और बजाज फिनसर्व में 2% की सुस्ती देखी गई। इसके विपरीत इंफोसिस में 2.5% का उछाल आया, टेक महिंद्रा 2.2% के लाभ में रहा और टीसीएस में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 17 आउट ऑफ द 28 सेक्टर्स एज lower among the top laggards. Housing finance dropped 1.1%, insurance slipped 1%, and healthcare dipped over 0.9%. In contrast, utilities surged nearly 2.1%, power advanced over 1.7%, and IT gained 1.4%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,563 companies advanced. 1,810 companies declined and 205 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 13 पैसे की मजबूती के साथ 95.15 रुपए पर बंद हुआ। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बाजार की चाल रही, जिस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव हमने देखा और अंत में गिरावट भी नजर आई, किन कारणों को इनके पीछे जिम्मेदार मानते हैं, क्या स्थितियाँ रही जिनसे बाजार की ऐसी स्थिति हमारे सामने नजर आई?
2: देखिए निखिल जी, काफ़ी अर्से से मार्केट का जो टेक्सचर है बड़ा खराब चल रहा है और कल थोड़ी उम्मीद हमें लग रही थी, जिस तरह कल मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल आया था, लेकिन आज फिर लुढ़क गया
1: जी।
2: तो टेक्सचर बड़ा वीक है, उसके कई कारण हैं। एक तो जैसे आप अपने न्यूज़ रीड आउट में क्रूड ऑयल का जिक्र किया आपने, वो उसमें फिर उछाल आ गया क्योंकि मिडल ईस्ट की जो समस्या है और जटिल हो गई। अब वो नॉट ओनली पर्शियन गल्फ में इशू हो रहा है, उधर रेड सी में भी जो हूतीज का हमले हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जो डेली सप्लाई है मिडल ईस्ट से वो बहुत उसको फ़र्क पड़ा है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट ख़राब हो गया। और दूसरा ये है कि पूरे संसार में इस टाइम महंगाई का काफ़ी आलम है और महंगाई जो है एक पूरे संसार में एक समस्या बनी हुई है
1: जी,
2: चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो। अबर अभी आपने जिक्र किया WPI का इंडिया में, हमारे यहाँ भी को तो WPI

0: ज्यादा रोल है या डीआईएस का ज्यादा रोल है या समय की मांग है कि इस तरह का होना चाहिए?
1: ये तो मार्केट प्ले है और ये तो जग जाहिर है कि एफआईआईएस यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसको अगर एक चीज़ में थोड़ी अगर किसी ने स्टेबिलिटी दी है उस आउटफ्लोज को रोकने की या उस आउटफ्लो को न्यूट्रलाइज करने की काफ़ी हद तक, वो हमारे डीआईज ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से दी है
0: जी।
1: और डीआईज जो है वो फिर म्यूचुअल फंड पे काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं। जो आम मिडिल क्लास का इन्वेस्टर का पैसा है जो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया हर मंथ में आ रहा है इक्विटी में सिप से, और बहुत क्रेडिट देना चाहिए हमारे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कि वो इतनी मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि घबरा नहीं रहे। उनको अगर नेट एसेट वैल्यू NAV कम भी दिखता है
0: जी,
1: तो वो इस चीज़ में अपनी उम्मीद रखे हुए हैं कि नहीं, थिंग्स विल टर्न अराउंड। तो ये सारी चीज़ें FIIs तो जा रहे हैं बिकॉज कैपिटल के जो एवेन्यूज हैं वर्ल्ड में हर जगह हैं, तो वो लोग माप तोल करते रहते हैं
0: जी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग यानी रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नए उद्योगों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि बैंक के लिए एक रणनीतिक साझेदार चुना गया है और इसकी मदद से बैंक में नई पूंजी लगाई जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि भारत सरकार और LIC पुनर्गठित इकाई में 34% हिस्सेदारी अपने पास बनाए रखेंगे। प्रकाश जी, जब भी इस तरह की बात होती है रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दी जाती है, कई सारी योजना उसके पीछे काम कर रही होती, कई सारी नई चीजें लाने की सामने बात हो रही होती है, ऐसे में यह कहा जाना कि नई पूंजी लगाई जाएगी, नई बातें होंगी और खासतौर पर सरकार यह भी कह रही कि भारत सरकार और LIC इस पुनर्गठित इकाई में 34% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी, इसके क्या मायने बनते हैं?
1: देखिए निखिल जी, किसी भी बैंक को आगे बढ़ने के लिए लगातार पूंजी चाहिए। ये टेलीकॉम सेक्टर की तरह है
0: जी।
1: अगर बैंक को किसी इवन बेस्ट ऑफ द बैंक्स अगर आगे बढ़ना है तो उसको हमेशा पूंजी चाहिए, क्योंकि आपने लेंडिंग करनी है। तो लेंडिंग और कैसे बढ़ाएंगे जब तक आपकी अपनी पूंजी या वो खाली जो आपका पब्लिक का डिपॉजिट होता है, व्हाट इज नोन एज अंग्रेजी बोलते कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आपका अपना भी कितना पैसा है, व्हाट इज योर ओन स्किन इन द गेम। तो वो उसके लिए अगर आपको किसी भी बैंक को आगे बढ़ना तो एडिशनल पूंजी चाहिए। तो सरकार ने अपनी विजडम में सोचा होगा, सोचा है कि इस बैंक को अगर पूंजी एक स्ट्रेटजिक पार्टनर मिला लेते हैं तो वही क्या।
0: बैंक की स्थिति भी हमने देखा है कि पिछले दिनों में बेहतर ही नजर आई है।
1: हाँ, क्योंकि तभी तो स्ट्रेटजिक पार्टनर आएगा ना आपके उसमें, तो आया स्ट्रेटजिक पार्टनर।
2: सो यू सी द क्रेडिट टुवर्ड्स MSMEs इंप्रूविंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस FDI स्टेक इनटू IDBI by Fairfax Financial Holdings Limited.
1: Well, in the overall scheme paradigm of banking, this is one of the small banks. It's not a big bank. So the credit, when you say credit growth anyways has been quite a steady, quite an impressive credit growth in the last few months. So वो कोई इशू नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ इज नॉट अ इशू। व्हेन इट कम्स टू MSMEs, इट्स अपॉन द इंडिविजुअल बैंक टू डिसाइड व्हाट इज द काइंड ऑफ मिक्स दैट इज गोइंग टू काइंड ऑफ अ फॉलो। इज इट गोइंग टू डू पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड ऑफ लेट पर्सनल फाइनेंस हैज बीन द फ्लेवर ऑफ द सीजन, बट यू डोंट नो कॉर्पोरेट। बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बैंक्स, दे प्रेफर MSME, they prefer, but there's enough competition. So credit growth should be there, but we'll see. But it sends a good signal, as I said earlier, to induct a strategic partner.
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से थोक महंगाई दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा है। आंकड़ों के अनुसार सितंबर में ईंधन और विद्युत की महंगाई दर बढ़कर 25.85% हो गई, जबकि अगस्त में ये 22.93% थी। विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर 8.37% से बढ़कर 9.76% और प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 7.76% से बढ़कर 6.7% हो गई है। वहीं खाद्य वस्तुओं और खाद्य उत्पादों की महंगाई दर भी अगस्त के 7.7%

0: 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में पांचवें दौर की बातचीत हुई, जिसमें काफी कुछ निकल करके सामने आया। तो दोनों देशों को आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, और ऐसे समय में जब ग्लोबली चैलेंजेस भी कई सारे हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं, तो इस पर क्या कहेंगे?
1: नहीं, अच्छा है, एक डाइवर्सिफिकेशन है हमारा। कनाडा के साथ बड़ा अच्छा रिलेशंस है, और होना भी चाहिए, कुदरतन होना चाहिए, बिकॉज उसमें हमारा बहुत स्ट्रांग डायस्पोरा है, वहाँ की सरकार में, हमारे के एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे बहुत बड़ा स्टेक है कनाडियन इकोनॉमी में, और उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस और स्ट्रेटजिक रिलेशंस काफ़ी अहम है, और अच्छी बात है कि इस तरफ बात आगे चल रही है।
0: हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पे ऊर्जा की बात है, महत्वपूर्ण खनिजों की बात है, एरोस्पेस की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत इंजीनियरिंग की भी बात हो रही है कनाडा के साथ में, इसका फ्यूचर कैसा नज़र आता है?
1: अच्छी बात है ना, बिकॉज हमें एक्सेस मिलेगी ये इन सब टेक्नोलॉजीज़ में, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमारे पास खाली एक नहीं ना, कई सोर्सेज होने चाहिए टेक्नोलॉजी के, एक्सेस के, पार्टनरशिप के। तो कनाडा एक अहम, ओवरऑल जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उसके मद्देनज़र ये बहुत स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वाला मामला भी है।
2: In more news, central government has notified amendments to the India-Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement, DTAA, introducing a principal purpose test, PPT, to prevent the misuse of treaty provisions for tax avoidance and evasion. Under the revised agreement, tax treaty benefits may be denied if obtaining such benefits is found to be one of the principal purposes of a transaction or arrangement.
0: एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.4% से ज्यादा नीचे आया, और जापान का निक्केई 225 मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।
2: लेट्स हैव अ लुक एट द ऑयल मार्केट नाउ। ऑयल मार्केट रिपोर्ट फ्रॉम IEA। अ ग्लोबल ऑयल सप्लाई इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 5.8 मिलियन बैरल्स पर डे टू एन एवरेज ऑफ 100.7 मिलियन बैरल्स पर डे दिस ईयर, before rebounding by 7.7 million barrels per day in 2027. However, the International Energy Agency has warned that renewed attacks in the Gulf have made the recovery fragile. According to the IEA's monthly oil market report released today, global oil supply increased by 2.5 million barrels per day month on month in September, driven by Gulf producers. However, the IEA noted that the recent escalation in attacks on regional energy infrastructure and tanker traffic threatens to derail further gains. Meanwhile, the IEA forecast that oil demand would fall by an average of 2.6 million barrels per day in 2026. Diesel is expected to account for 25% of that demand drop amid restricted product availability, soaring fuel prices and deteriorating economic outlook linked to the West Asia conflict. Global oil demand is projected to recover by 2 million barrels a day next year, less than its previous forecast of 2.6 million barrels per day. Let's also have a look at the crude oil market along with this. Global crude oil prices rose today amid supply risks. Brent crude was trading 0.6% up at $106.32 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 1.8% higher at $95.88 per barrel at the time of writing this report. Very interesting that oil consumption is going to fall substantially, one could say, because of the habits being induced by the West Asia conflict, and that will pick up in 2027. There's also mention of diesel. And diesel has been making the news as well between US and Russia. How do you see this report by IEA?
1: Well, IEA is giving a projection. And then projection is based on, for instance, it talks about rebounding the daily production by 2027. So that means it is expecting that the Middle East situation should ease. So it is very important that the Middle East situation must ease. So these projections, the positive projections are based on this premise that we have peace in this region, in this troubled region. So it all depends how situation. When it comes to diesel shortages have forced America to have this kind of a, on the one hand you have a law prohibiting, not only prohibiting, even punishing the countries who have oil trade with Russia. On the other hand, you allow Russian diesel to come in. So this is a problem. How do you reconcile the world at large? How do you reconcile? What kind of signals are being sent is a big question.
2: So when a decision is taken arbitrarily, how does a country like India negotiate these?

0: these waters where Russia is a key ally and an exporter of crude oil to India, while at the same time ensuring energy security and maintain relations with the US, with whom we are yet to sign a trade deal.
1: That's why the trade deals is getting into tough negotiations. That's why in the backdrop of what's happening, at the end of the day, our negotiators are also watching what's happening around.
2: भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 1% गिरकर 1,46,064 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 2.4% लुढ़क कर 2,13,822 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 250 points. Nifty settles at 22,623. India's wholesale inflation surges to 11.39% in September this year. And the International Energy Agency projects global oil supply to decline by 5.8 million barrels per day. Forecast oil demand to fall by 2.6 million barrels per day in 2026. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: ஒலித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது திரைகானம். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அமன் யாதவ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल से हर साल 35 लाख यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदम दारचा सड़क भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सड़क लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी और क्षेत्र में आने जाने के लिए एक नया रास्ता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा वे 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इनसे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आइची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक

0: सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई है। श्रृंखला का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnaw said the assistance under the Disability Pension Scheme will be ₹375 for beneficiaries up to the age of 79 years and ₹625 for those aged 80 years and above.
3: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
1: 3 crore 20 lakh ho jayegi.
2: Pension schemes for senior citizens and widows.

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அமன் யாதவ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक पकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपये की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निमू पदूम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3 करोड़ 20

0: खाक हो जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विदेश मंत्रालय ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में 29 देशों के 33 राजदूतों और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्हें भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं, स्वदेशी तकनीकों और आधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के साथ विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years, from 2026-27 to 2030-31, with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi yesterday. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above. Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The union minister said the government has also given nod to the strategic restructuring of IDBI Bank. Mr. Vaishnav said the cabinet has also cleared a productivity-linked bonus of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of their performance.
3: The cabinet today approved a productivity-linked bonus equivalent to 78 days' wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian Railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2,009 crore rupees.
4: 2,009 crore rupees ka total bonus hai.
2: PM Modi will launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh called for stronger industry partnerships to help promising student innovators improve their products, respond to market requirements and explore commercial opportunities. The minister said this while felicitating young innovators at the 12th National Level Exhibition and Project Competition, NLEPC, under Inspire Manak in New Delhi.

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அமன் யாதவ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपये की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदूम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आइची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी

अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 39% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: கேட்ட அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது நெஞ்சும் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி. எஃப்எம் கோல்டு அலை வரிசையில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: ये आकाशवाणी है और मैं अमन यादव के साथ आकाशवाणी समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा. प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निमू पदुम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है. इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी. श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की. श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है. श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी.
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा. पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा. 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे. टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी.
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो. प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की. उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की. इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की. भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है. उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए. सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं. इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी. इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे. जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा. पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में 4th T20 इंटरनेशनल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदूम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भव्योन्मुखी रणनीतिक राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में 4th T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई। श्रृंखला का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை திருத்தணி சிஎஸ் வெங்கடேசுலு அவர்களின் நாகஸ்வர இசையை கேட்டோம். திருக்கண்ணபுரம் ஜே சௌரிராஜன் அவர்கள் தவில். எஃப்எம் கோல்டில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा. प्रमुख परियोजनाओं में कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 200

0: 98 किलोमीटर लंबे निम्पो पदुम दारचा सड़क मार्ग, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डहा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक रचनात्मक और रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाए जाने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर भी बातचीत की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और ये तुरंत बंद होने चाहिए। केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों के विद्यार्थियों को ₹1,370 की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए ₹70 करोड़ की से ज्यादा की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. PM Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games.